0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, Barrister at Law and Personal Injury Lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. वही जायका, वही लज़त और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुज़ीन।
3: Hello everyone, my name is Ahsanul Hafiz and I am your Ontario Liberal candidate in Scarborough Southwest. When I immigrated to Canada back in 2002, I chose to make Scarborough my home. Back then, life was affordable, but today it is not. Scarborough deserves better and I will fight for a more affordable Scarborough. Visit votehafiz.ca to learn more.
4: This ad has been authorized by the CFO for the Scarborough Southwest Provincial Liberal Association.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Global Travel and Tours.
3: Global Travel and Tours. Miss

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
1: जनाब कामरान रशीद साहब आज बिजी हैं, इन मंडे को फिर आपसे मुलाकात कराएंगे क्योंकि एक जबरदस्त सीट सेल भी आई हुई है और अगले साल हज के लिए भी अभी से प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो गई है, रजिस्ट्रेशन जो है अभी शुरू हो गई है। दुनिया में कहीं भी आपको सफर करना हो आप कॉल कर सकते हैं 905-275-3555 यही नंबर जो है इनका व्हाट्सएप पे भी है। अच्छा जनाब आज केपी का खैबर पख्तूनख्वा का भी नए माली साल का बजट जो है वो पेश हो गया है। इससे पहले पंजाब सिंध और बलूचिस्तान के बजट पेश हुए थे, 2170 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है और एज यूजुअल हर जगह जब होता है, हालांकि वहाँ बहुत बड़ी अक्सरियत है पीटीआई की, अपोजिशन के बाहर कुछ भी अरकान हो तो वहाँ भी नारे शारे जो है वो लगते रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने बताया है कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है, कम से कम उजरत 45,000 करने की तजवीज़ है, सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब मुख्तस जो हैं वो किए गए हैं। इसके अलावा तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब 10 करोड़ 39,10,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 2765 मनसूबे जो हैं वो शामिल किए गए हैं। तरक्याती मनसूबों के लिए 2448 अरब रुपये दरकार होंगे। सड़कों की तामीर के लिए 39 अरब 49 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। मुफ्त कुतुब और ESEF ग्रांट के लिए 8.5 अरब रखे गए हैं। असातिज़ा की भर्ती के लिए 1.7 अरब और दीनी मदारस के तलबा के लिए 145 मिलियन रुपए रखे गए हैं। अमन उमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के लिए 14 अरब और BRT के लिए 7.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए माली साल के बजट में रेस्क्यू 1122 की तौसी के लिए 2.2 अरब मुख्तस किए गए हैं, जबकि बैरून मुल्क जाने वालों के लिए 2 अरब कर्जे मुख्तस किए गए हैं। हज़ारा की 8 तहसीलों में खेल के मैदानों के लिए 150 मिलियन मुख्तस किए गए, अच्छी बात है और तमाम चीज़ें जिस तरह से प्लान की गई हैं हो जाएं तो यकीनन सूबे के लिए बहुत फ़ायदा होगा। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: बटकड़ाही की पिकनिक लोकेशन में आपके लिए हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेस। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल, जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002। कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही, तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।
1: टोरंटो तैयार हो जाओ, सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली फैमिली एंटरटेनमेंट नाइट इनाम घर कनाडा 28 जून को, जिसमें शामिल हैं मजेदार डिनर, दिलचस्प गेम, बड़े इनाम और लाइव कॉन्सर्ट। टिकट सिर्फ $25, 10 जून के बाद $39। बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 4167106777। ई ट्रांसफर inamgharcanada@gmail.com।
2: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम, लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट। अब विशाल से ही लीजिए गारंटीड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस। कंपेयर विद विशाल एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स ऑन विजिटर्स एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस। कॉल विशाल त्रिवेदी एट 6477679852, दैट 6477679852। विशाल त्रिवेदी।
0: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स, अब मिसिसागा के बाद स्कारबरो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन, 4167579999। दांतों की कोई भी बीमारी हो, आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट, ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 9052325678।
3: अगर आपके विंडोज और डोर्स लीक हो रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो वक्त है आप चेंज करवा लें। आप इनसे रब्ता करें, पैसे चाहे एक साल के बाद दे दें, सम कंडीशंस में अप्लाई। 4162063200, राइट विंडो फोर्स 4162063200। चाय खाना पाकिस्तानी, अथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन है, और ये आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं रिजवे प्लाज़ा में, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाज़ा। और अथेंटिक आपको चाइनीज़ खाने पाकिस्तानी स्टाइल के मिलेंगे 9055147877। और बटकड़ाही की पिकनिक लोकेशन में आपके लिए नाश्ते का एहतमाम है, आप तशरीफ़ ले जाइए। कहते हैं ऐसा नाश्ता आपने पहले कभी नहीं किया होगा। 820 किंगस्टन रोड पिकनिक 9058390002।

0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 पेप एवेन्यू। अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, 9058280009। यू लॉग इन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111. Or visit mwcanada.org.
4: Barbecue Tonight की दूसरी लोकेशन 5165 Dixie Road, Dixie और Emco का इंटरसेक्शन Mississauga में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज। जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 Dixie Road, Dixie और Emco का इंटरसेक्शन Mississauga में, 9052829868।
5: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
6: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
5: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
6: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
5: दैट्स वंडरफुल।
6: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
5: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
6: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट BramptonAppliances.ca।
7: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं? तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 4162063200। It's 4162063200। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। PC लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है। रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, Mississauga। For booking information, call 905-514-7877. वही जायका, वही लज्जत और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन। रियल एस्टेट मार्केट में पॉजिटिव एक्टिविटी शुरू हो गई है और यही वक्त है कि आप बेहतर प्राइस पर अपना घर बेच भी सकते हैं और अपनी पसंद का घर खरीद भी सकते हैं। फैसला वही जो सही वक्त पर किया जाए। अगर आप अपना घर खरीदना या बेचना चाह रहे हैं तो एतमाद के साथ टीम भट्टी से राब्ता करें। कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861 6472957861
8: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
7: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861
4: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज में रابطے के नंबर 416-593-0003 अजनाब पाकिस्तान लिए चलेंगे। बिलाल जमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, खुश आमदीद कहेंगे। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। बिलाल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। जी बिलाल साहब आपकी आवाज शर्त नहीं आ रही, जरा देखिए।
9: हेलो।
4: हाँ जी अब आवाज आ रही है आपकी। क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से?
9: जी बेहतरीन, बिल्कुल ठीक ठाक।
4: जनाब आज बड़ा जबरदस्त जो है ऐलान हुआ है और मसनूआत जो हैं पेट्रोल की कीमतों में बड़ी 300 से भी नीचे आ गई हैं। पेट्रोल 299 रुपये 50 पैसे जो है हुआ है और पहले जब जंग से पहले तकरीबन 266 थी, तो तकरीबन करीब शायद एक और थोड़ी सी प्राइस कम हुई तो फिर जो हैं वो भी दे सकते हैं। और क्योंकि जब तक जो चीज़ें आनी होती है, अगर कहीं पे इनका माहिदा भी होता है तो जब तक वो आते हैं तेल आता है तो ज़ाहिर है उस पर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है रिलीफ है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि आवाम को मुकम्मल रिलीफ क्यों नहीं दिया, क्या कहेंगे आप?
9: जी देखें, आपने सही कहा कि एक तो टाइम भी लगता है और दूसरा ये कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस थी वो तकरीबन $70 के करीब थी और अभी भी उतनी ही वापस नहीं आई। 76 के करीब वापस आई थी और सोना है कि 80 के करीब वापस, मतलब इसके दरमियान फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर मजीद प्राइसेस कम होती हैं तो उसका भी वो आवाम को दिया जाए, मुकम्मल रिलीफ दिया जाए और प्राइसेस वापस जो है वो 270 की जो सतह है उसके ऊपर अवेलेबल होना भी चाहिए। मुकम्मल रिलीफ जो है वो आवाम को मिलना चाहिए। जो हुकूमत ने लेवी के ऊपर कीमत बढ़ा के जिस तरीके से, मतलब वो तो तकरीबन 3 महीने की अगर हम जंग लगाएं तो 3 महीने के अंदर काफी हुकूमत ने उसका मतलब कि फायदा उठाया है। तो अगर फायदा उठाया है तो अब वापस कीमतें लाकर आवाम को भी थोड़ा मतलब कि रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत ने जब नोटिस किया है, एक बात वही आ जाती है कि आवाम के ऊपर आप बोझ डालते हैं और आवाम जब वो बोझ बर्दाश्त कर लेती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी को जो है ना वो आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, वक्ती तौर पे अगर हुकूमत की जरूरत थी, हुकूमत का साथ आवाम ने दिया और आवाम ने उस वक्त में कोई ऐसे मतलब वो नहीं किया, आप क्या कह सकते हैं, एहतजाज नहीं किया या हुकूमत जो है ना कोई उसके ऊपर हुकूमत को ज्यादा आड़े हाथों नहीं दिया। तो अब इसी तरीके से जब प्राइसेस वापस हुई हैं तो बिल्कुल लोगों का मुतालबा सिर्फ प्राइसेस के हवाले से नहीं है, कमोडिटीज के हवाले से भी है कि अगर जो है ना पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं तो फिर जो कमोडिटी की प्राइसेस थी इससे पहले वो भी उसी सतह के ऊपर वापस आनी चाहिए।
4: ऑलराइट, खैबर पख्तूनख्वा का भी बजट जनाब पेश हो गया है, 2122 अरब का बजट पेश हुआ है। तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। बजट खसारा जो है 48 अरब का होगा। पीटीआई पहले तो बजट पेश करना ही नहीं चाह रही थी या मशरूत तौर पर आरजी बजट पेश करने की तजवीज़ थी, तो फिर क्या चेंज आया? इमरान खान साहब से मुलाकात तक बजट पेश ना करने के मामले का क्या हुआ? मतलब जो कोई स्पेशल दरमियान में कुछ इंटरवीन किसी ने किया है या क्या मामला है?
9: जी इंटरवीन जो अलीमा खान है उन्होंने तो रिक्वेस्ट की है, वो कह रही हैं कि ना मतलब कि बजट पास किया जाए। लेकिन मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था کہ بجٹ کے ساتھ اس کو مخصوص کرنا. دیکھیں اس سے پہلے پی ٹی آئی نے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ فورس بنانے کا بھی اعلان کیا تھا, عمران خان رہائی فورس بننی تھی. اسی طریقے سے انہوں نے 10,000 بندہ بھی اکٹھا کرنا تھا اڈیالہ جیل کے باہر. تو یہ تو بہت سارے مطلب ہے کہ پی ٹی آئی تو بہت سارے کام کرنا چاہتی تھی, لیکن وہ کرنے کے لیے آپ کی وہ پوزیشن بھی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جو بجٹ کا معاملہ تھا, دیکھیں آپ پورے صوبے کو آپ اسٹیک پہ لگا کے یا اسٹیٹ کو آپ بلیک میل کر کے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ایکسیس آپ کو عمران خان تک ایکسیس مل سکتی ہے, تو وہ ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ پوسیبل نہیں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر بھی دو جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ دھڑے جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک دھڑا وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ احتجاج کر کے اور حکومت کو گھٹنوں پہ لا کر ہی ہم یہ سارے کام کروا سکتے ہیں, وہ گروپ علیمہ خان کا ہے, وہ گروپ سہیل افریدی کا ہے. دوسرا پولیٹیکل گروپ ہے جو جس کو فائدہ ہے اس ساری سچویشن کے ساتھ, وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہمیں نرم گوشہ رکھنا چاہیے, ہمیں جو بھی راستہ ملے گا وہ عدالتوں کے تھرو, وہ حکومت کے تھرو, مذاکرات کے تھرو ہی ملے گا. اور کچھ نہ کچھ معاملات سیٹ ہوئے بھی ہیں جب سے انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے. اس کے فوراً بعد جو ہے نا آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ کی ٹون چینج ہوئی ہوئی ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں جو ہیں وہ مطلب کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی آفر کی ہے اور اپوزیشن نے اس کے اوپر لگ پہ کہا ہے,
4: اسمبلی میں ملے ہیں ان کے ساتھ جا کے ہینڈ شیک کیا ہے,
9: جی ملے ہیں اور رابطے کچھ جو ہے نا وہ بحال ہوئے ہیں, اور جو ہے نا واسط کیسر ان لوگوں کے ساتھ. تو ایسے ہی ہے کہ مطلب کہیں نہ کہیں اگر ملاقات ہوتی ہے. میں نے آج دیکھا ہے ایک بڑا لمبا جو ہے نا وہ پیغام انہوں نے جاری کیا ہے خواجہ سعد رفیق نے, اور انہوں نے بھی سارا مطلب کہ اس کا لب لباب اگر میں کہوں تو یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے نا مطلب کہ اتنا دیوار سے نہ لگایا جائے. اور عمران خان کیٹیگوریکلی انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان اور ان کی ملاقاتیں اور ملاقاتیں بھی بحال ہونی چاہیے, اور جہاں سے ان کی فیملی ان کی مرضی کا علاج چاہتی ہے وہ علاج بھی وہاں سے ہونا چاہیے.
4: صحیح. خراب شہرت رکھنے والا جج عدالتی منصب پر برقرار نہیں رہ سکتا, سپریم کورٹ نے یہ آج بیان دیا ہے. جج کی خراب شہرت پورے عدالتی نظام کو نقصان پہنچاتی ہے, اسے منصب پر رکھنا عدالتی مفادات کے منافی ہے, جس سے شاہد وحید کا یہ فیصلہ ہے. کیونکہ اس بات کے لیے بھی فیصلے کی ضرورت تھی, یہ عمل تو کرینہ قیاس نہیں ہونا چاہیے, تو روٹین ہے یہ, تو جو ان کا جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان کو تو فوراً فیصلہ کر لینا چاہیے اس کے اوپر.
9: جی دیکھیں بڑی مطلب ہے کہ 2013 کے جو ہے نا یہ کیس ہے, اور ایڈیشنل جو ہے نا اینڈ سیشن جج صاحب کا کوئی کیس تھا, اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان کی شہرت جو ہے وہ جج بننے سے پہلے بھی کوئی اتنی ٹھیک نہیں تھی. تو دیکھیں بڑی مطلب ہے کہ جو جج کا جو ہے جو منصب ہے یہ تو بہت مطلب ہے کہ ریکوائر کرتا ہے کہ آپ, اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے اندر بھی جو قاضی کا جو ہوتا ہے وہ اس شخص کے لیے جو ہے نا وہ مختص کیا جاتا ہے جو آپ کی سوسائٹی میں سے سب سے اچھا مطلب کہ وہ رکھتا ہو, کریکٹر رکھتا ہو, منصب رکھتا ہو, حیثیت رکھتا ہو, اور لوگ اس کو مطلب کہ اچھے طور سے اس کو جانتے ہوں. تو جج کے لیے تو یہ جو ہے نا وہ چیز صفحے اول کے مطلب یہ ہونی چاہیے کہ یہ سارے کریکٹرز اس کے اندر پائے جاتے ہوں, اس کا کیریئر بے داغ ہو, کوئی الزام اس کے اوپر نہ ہو, اور اس کی جو مالی حیثیت ہے, ذاتی حیثیت ہے, وہ ان سب چیزوں سے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ پاک ہو, تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا مطلب کہ آپ وہاں پہ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اس کو وہاں پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ اسکروٹنی آپ نے اس طرح کہا, ہم اگر اپنی تاریخ دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ ججوں کی تاریخ ہمیں اس طریقے سے نظر آتی ہے کہ یہاں پہ جب جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے جو ہے نا مطلب خلاف کا آئی شکایت آئی, تو بجائے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے یا بجائے اس کو فیس کرنے کے انہوں نے استعفا دینا جو ہے نا وہ زیادہ مناسب سمجھا. تو اگر مطلب یہ کہ یہ وہ ہو کریکٹر ہو, اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی جو نواز شریف صاحب کے جنہوں نے ججمنٹ دی تھی ان کے بارے میں بھی اسی طرح پتا لگا تھا کہ جب وہ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ملتان تھے تو ان کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ سامنے آئی تھی بنی تھی, تو بہت اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ چرچا ہوتا رہا. غالباً وہ ملک کر کے کوئی جو ہے نا وہ جج تھے. تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو ایک پوری تاریخ ہے. مریم نواز نے جو ہے نا وہ کہا, چاہے وہ ثاقب نثار ہوں, چاہے وہ جو ہے نا وہ اور ججز ہوں, کہ ہماری ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. مطلب کہ جب آپ کے کریکٹر ہوں تو وہ اوور آل جو ہے نا وہ سب کے لیے یہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. ایک جج کا آپ نے فیصلہ دے دیا, لیکن اوور آل اگر آپ نے سوسائٹی کے اندر, اور یہ جج وہ ہیں جو لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں, لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں, तो उसपे जो है ना वो मत रहेगी कितनी बड़े भारी जो है ना वो जिम्मेदारी है। तो अगर उनका करेक्टर ही जो है ना वो टॉप टॉप का नहीं होगा तो फिर तो बिल्कुल मतलब एक बड़ा सवालिया निशान है उसको।
10: ऑलराइट जी, बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने की कोशिश, पाकिस्तान रेलवे में मुलाजमतों का जाली इश्तेहार जो है वो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इश्तेहार में पाकिस्तान रेलवे में जूनियर इंजीनियर की असामियों का जिक्र किया गया है। ऐसे फ्रॉड कितने कामयाब रहते हैं और मुतल्लिका इदारे इससे मुतल्लिक कोई पेशगी कार्रवाई क्यों नहीं करते? सर्कुलेट हो रहा है, लोग जा रहे पैसे दे रहे होंगे जो आजकल फॉर्म शॉर्म के साथ होते हैं और उसके बाद जब पता चलता है कि जाली है, क्या इस पर कुछ काम नहीं होता या इस पर कुछ जो इदारे एक्शन नहीं लेते हैं?
9: जी देखिए, काम बिल्कुल होना चाहिए। जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसने तो एक एलामिया कह लें या वार्निंग कह लें, अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया कि हमारे पास तो कोई ऐसी पोस्ट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन इस तक जो है ना मतलब ये कि वो इक्तफा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की चीज को सोशल मीडिया पे तो जो आपके मतलब ऑनलाइन फ्रॉड के जो इदारे हैं जैसे NCCIA है उसको एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे इंतजार किया जाता है कि लोगों के साथ फ्रॉड हो जाए, जब फ्रॉड हो जाएगा फिर कोई शिकायत लेकर आएगा, जब कोई शिकायत लेकर आएगा तो फिर उसके ऊपर जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल पेशगी ही होनी चाहिए। ऐसे चीजें जो सर्कुलेट कर रही होती हैं उसके ऊपर अगर आप एक्शन लें, या तो उसके ऊपर कोई नंबर दिया गया होगा या कोई एड्रेस दिया गया होगा, और बाजू का नहीं दिया जाता और वो इस तरीके से फ्रॉड किया जाता है कि वो इंतजार करते हैं कि जब लोग मालूमात हासिल कर लेंगे तो फिर कोई मिलता जुलता जो नंबर होता है जैसे रेलवे का है या रेलवे डिपार्टमेंट का है, उसे मिलते जुलते किसी नंबर से जो है ना वो आपको कॉल करके तो सादा लोग हैं उनको बेवकूफ बनाने की जो है ना वो कोशिश जो है ना वो की जाती है कि हाँ जी नहीं वो हमसे गलती होगी, आपने इंफॉर्मेशन ली थी, इस तरह की असामी जो है ना वो आई हुई है तो आप अगर उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना तो ये नीचे दिए गए नंबर पे क्लिक करें या लिंक पे जो है ना वो क्लिक करें। इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है।
10: ठीक। अच्छा, ईरान अमेरिका के मामले नमन मुआहदे के बाद के चार रोज के दौरान मुल्क भर में 2 खरब ईरानी रियाल जो है वो खरीदे गए, तो क्या लाखों की ईरानी करेंसी खरीदने वाले पाकिस्तानी आपको लगता है बहुत जल्द करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं? मतलब जाहिर है उनका यही ख्याल है कि हालात बेहतर हो जाएंगे तो चले पहले ही करेंसी स्टॉक जो है वो कर लें, ऐसा हो सकता है?
9: जी देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में तो ये ना मतलब एक भेड़ चाल है। पहले आपने इसी तरीके से सोने के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया, वो 6 लाख रुपए तक इन्फ्लेटेड उसका रेट जो है वो जाके इस वक्त 4.5 लाख रुपए के ऊपर
10: 15,000 रुपए कम हुआ है। मतलब
9: कम 15,000 रुपए एग्जैक्टली कम हुआ है, मतलब 4.35 पे या 33 पे इतने पे कहीं उसका रेट आ गया। और इसी तरीके से चांदी जो थी उसको इतना आपने जो है ना वो इतना ब्लैक में उसको इन्फ्लेट किया कि 18,000 रुपए तक उसका रेट चला गया, जबकि अब उसका ओरिजिनल जो रेट है वो 7,000 या 8,000 रुपए के ऊपर है जो स्टेबल रेट है उसका। फिर आपने सोना चांदी जो है ना वो छोड़ के यही काम आपने कॉपर के साथ तांबे के साथ जो है ना वो शुरू कर दिया, उसका रेट कहाँ पहुंच। ये तो मतलब है कि जो आप तो जो आम लोग जो इस टाइम करेंसी ले रहे हैं वो तो पता नहीं करोड़पति अरबपति बनते हैं नहीं बनते, लेकिन जितने लोगों ने ये करेंसी जो एक्सचेंज वाले हैं जो ऑलरेडी उसको डबल से भी ज्यादा ट्रिपल रेट के ऊपर उसको जो है ना वो बेच रहे हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त जो ओरिजिनल उसका रेट है वो 4,000 रुपए है 1 करोड़ का, तो वो उसको बेच रहे हैं 8,000 रुपए के ऊपर, ऑलरेडी डबल के ऊपर बेच रहे हैं, तो उनको तो फायदा
10: होगा। ये वैसे स्मगल होकर करेंसी आती होगी ना, जाहिर है उस तरह का तो सिस्टम है नहीं।
9: मैं बिल्कुल ये जो है ना वो कहने लगा था कि पहले तो बात ये है कि इतने खरबों को पाकिस्तान से बहुत हाँ मतलब हमारे यहाँ पे ठीक है कि हमें पता है कि हमारे जो अहले तशी भाई हैं वो जाते हैं वहाँ पे ज्यारतें करने के लिए जाते हैं, लोग इराक भी जाते हैं दूसरी जगहों पे भी जाते हैं और सैर करने भी जो है ना वो जाते हैं, लेकिन बहरहाल उसके लिए इतनी जो है ना वो करेंसी है इतनी बड़ी जरूरत के अंदर उसकी जरूरत नहीं होती। तो जो है ना ये इसके ऊपर भी नोटिस होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर लोगों को लग रहा है कि जी ये करेंसी जो है वो चंद महीनों के अंदर या चंद सालों के अंदर ही जो है ना वो डबल हो के हमें फायदा दे देगी, तो आप उन ममालिक की मिसाल लें जो मुसलसल तरक्की की राह पे गामजन है। चाइना को अगर आप देख लें तो 13 साल लगे हैं उसकी करेंसी को जो है ना वो डबल होने में, तो अगर ईरान को भी अपनी करेंसी जो है ना वो डबल करनी है या उसकी वैल्यू बढ़ानी है तो सिर्फ एसेट्स अनफ्रीज होने से, और जो 300 अरब डॉलर है वो 300 अरब डॉलर उनको कैश नहीं मिल जाना, वो पता नहीं कितने अरसे में कितने,
10: बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल ठीक जी। और जनाब चलें कॉल्स की तरफ चलेंगे, स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 4165930003। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ आज थे जनाब 7997 ही फर्स्ट कॉलर थे जी, 7997 7997। आप ऑन एयर हैं सर, बात कीजिए।
11: कैसे हैं आप?
10: जी शुक्र है जी, थैंक यू।
11: चलिए कुछ तो कह अल्लाह अल्लाह करके कुछ हुआ है कि इसराइल की और इसकी कुछ बातचीत हुई और लबनान पे कुछ इन्होंने स्टॉप लगाया है, लेकिन जो जो उनके तेवर नजर आ रहे हैं इसराइल के, इसराइल ने जो टारगेट मुकर्रर किया है ना
10: जी,
11: वो टारगेट उन्होंने पूरा करना ही करना, या तो उनको ऐसा सबक मिले कि वो टारगेट की तरफ बढ़े ना। अमेरिका भी उनको ज्यादा देर नहीं रोक सकता, अभी ट्रंप साहब ने लोगों को लॉलीपॉप दे दिला के सिर्फ ये कर दिया है, अपने इलेक्शन तक के लिए कहानी की है, ठीक है। अब हमें जो है, हम पाकिस्तान

0: काम होना था,
1: ठीक
0: वो काम नहीं हुआ। पाकिस्तान की अपने लोगों के लिए अच्छाई के लिए अच्छे नेगोशिएटर चाहिए थे। पाकिस्तान को तीन चांस मिले, सीपेक का मिला, अभी ये वाला था, अभी दुबई नीचे हो गया, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं। वो प्लानर और वो नेगोशिएटर इस मुल्क में अच्छे हो, अगर अगर एक बहुत बड़ा है, इसका कोई जवाब नहीं है।
1: ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5666 सर, आप ऑन एन है 5666। शुजा भाई
2: कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल ठीक जनाब,
2: कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल ठीक सर।
2: ओके बटी साहब, बात ये है, देखिए आधा ग्लास खाली आधा ग्लास भरा हुआ, आपकी मर्जी है, जो मर्जी समझिए। बात यह पेट्रोल का जो रिलीज मिला है
1: जबरदस्त,
2: इंशाल्लाह ताला जो जो वादा किया है पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने वो पूरा करेगी करेगी, इसलिए भी तो मैं पीएमएलएन का
1: सपोर्टर
2: हमारी हूँ, क्योंकि इसलिए ये वोटर वोटर में वोटर को छोड़ें, बात ये कि एक ही जमात है जिसके पास फोकस है, जिसके पास लाइन है, जिसके पास डायरेक्शन है, बाकी की पार्टियां तो अपॉर्चुनिस्ट है, प्रेशर ग्रुप है। अच्छा जी, दूसरी तरफ आ जाए अदालतों की बात की, बात यह है कि हमारी अदालतें अगर ठीक हो जाए ना, आपका 90% मसले सारे यहाँ से हल हो जाएंगे। अब देखिए छोटी अदालत कत्ल की सजा देती है फांसी की, बड़ी अदालत उसे रोक देती है। अब भाई बड़ी अदालत तुमने उसको रोका तो जज को तो देखो, जिसने गलत फैसला दिया था उसको तो 20 पॉइंट मिले, उसको तो कोई पनिशमेंट मिले ना, ये क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट कहती है जी टर्न डाउन कर दो, तो ये अगर आप कर रहे हो टर्न डाउन किसी डिसीजन को, तो पिछली अदालत ने जो गलत डिसीजन दिया था उस जज का क्या करोगे? तीसरी चीज देखिए बटी साहब, बात यह है कि अभी तो MOA साइन हुआ है और ये लाइन मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, अबे सब कुछ मिलेगा भाई, तो वेट करो ना। अभी तो खुद आपने कल परसों कहा था कि ये MOA है, आज आप कह रहे हैं क्या लाइन मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, गैस मिल जाएगी, चिकन मिल जाएगा, अभी सब कुछ मिलेगा भाई, ट्रेन भी शुरू होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जहां तक ईरानी करंसी का है, इसको रिवाइव आने में 20 ईयर्स लगेंगे, 20 ईयर्स। जिन्होंने खरीदिया या क्या कौन सा माफिया है इसका, ये अपना खुद ही करते हैं,
1: ठीक है,
2: इसको 20 ईयर्स लगेंगे इकॉनमी को भूसा
1: बोलने। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5794 सर, आप ऑन रहे हैं 5794।
3: अस्सलाम
1: वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब,
3: ठीक है सर?
1: जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह।
3: देखिए बटी साहब, बात बड़ी सिंपल है, जिस तरह अभी मेरे भाई ने भी बात की, शुजा भाई ने रिलीफ आवाम को दिया है ना, जब 55 रुपीज का रिलीफ दिया ऊपर गई थी प्रोसेस, तो किस तरह आसमान सर पे उठा लिया था। लेकिन आज किसी भी मकसद दे, हम नाम नहीं लेते चले पार्टी की, ये मुल्क दुश्मन अनासर है भट्टी साहब। कभी किसी के मुंह से आपने ये सुना है कि भाई शुक्र है कि चले इन्होंने इतना अच्छा रिलीफ दिया है, इसके बाद और दें, हम भी उनके साथ हैं, लेकिन ये कभी नहीं देंगे भट्टी साहब। ये वो क्या कहते हैं ना, किसी ने किसी से पूछा तुम रोते क्यों हो, तो उसने कहा हमारी शक्ल ही ऐसी है। तो इनसे ये तो आप ना रखे कि ये इस तरह, बाकी PTI आप देख लें, अब पार्लियामेंट में भट्टी साहब उसी मकाम पे नहीं आ गए जिस तरह अभी बताया हमारे भाई साहब ने कि जनाब इन्होंने तो क्या क्या नहीं, हर हर बार इन्होंने इस्तेमाल करके देख लिया। भाई साहब जिस तरह भी आए हैं, चले हम इनको भी मान लेते हैं, ये जिस तरह भी आए हैं 2018 में भी जिस तरह आपको लाया गया था, तो वो फिर भी पार्लियामेंट में बैठे थे, बात उनसे की थी, ये भी इनको चाहिए था शुरू से ही, वक्त जाया किए बगैर इनके साथ बैठे बात करें, मुल्क को आगे लेके जाए। अगर फौज का रास्ता रुकना है तो आपस में मिल बैठ के जब तक बात नहीं होगी तो आप उनको नहीं रोक सकते। तो अदालतें, फिर वही बात, अदालतें भट्टी साहब आज नहीं, कई दहाइयों से ये डिराइव होती हैं। हाँ, बाकी अब ये कहती हैं कि जी हमें वही मकसद है, बेफैर जनरल मिल जाए जनाब हमें, वही बाबा जी डैम वाले मिल जाए तो फिर ठीक है, ऐसे नहीं होता। और दौर में उन्होंने भी

0: सितम सही है, लेकिन उस वक्त चले फिर वो रोते थे, अब ये रो रहे हैं। ये मुल्क इस तरह नहीं चलते, इस तरह आपस में मिल बैठे, कोई बातचीत करे, और फिर वही बात आए भट्टी साहब, ये उसी जगह पे आ गए हैं, आना पड़ता है। उस मुल्क का तरीका कार ही ये है, वो क्या कहते हैं कि 100 छितर भी खा के 100 प्याज भी खा के उसी जगह पे ही आना है।
1: थैंक यू सर।
0: तो अभी थोड़ा सा ईरान और अमरीका जो है ना, वो अभी मामलात थोड़े बहुत चलेंगे, लेकिन चले अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। आप देखिए, मुझे बता दे कैनेडा में प्राइसेस के ऊपर जा रही है आज।
1: ठीक है सर,
0: ये बातें बच्ची साहब, ये ऐसे नहीं होता। अब यहाँ हमारा क्रूड ऑयल भी अपना है, हमें क्या मिला है यहाँ।
1: ठीक है सर, और जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू वेरी मच,
1: बहुत शुक्रिया। 6492 जरदारी साहब आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए जरदारी साहब।
2: अटे साहब
1: जनाब अली,
2: देखिए जो आर्किटेक्ट इंजीनियर है ना पाकिस्तान का, इस वक्त जो हाइब्रिड सिस्टम का पूरा पाकिस्तान, इस वक्त चाहे पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, फेडरल हो, सब जगह पे सब कोलिशन गवर्नमेंट और कहीं अपोजिशन है। सिंध में कोलिशन है, गवर्नर अपना मुस्लिम लीग का है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसी तरह से पंजाब में उनका है हुकूमत है। तो ये कहना के डिंगे मारना के फलाने की हुकूमत है, ढिमकाने की हुकूमत है, देखो डिलीवर करो और आवाम को। मैं चौधरी साहब की इस बात से तो एग्री करता है कि पॉलिटिक्स पार्टीज को जो है ना डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए डायलॉग करना चाहिए, और डायलॉग सबसे बड़ा। और दूसरा ये मुझे समझ में नहीं आता, ना नून लीग का समझ में आता है, ना पीपल्स पार्टी का आता है, ना पीटीआई का आता है। भाई आप हुकूमत जो तुम्हारी काम कर रही हो कर रही है, लेकिन तुम लोग आवाम से रब्ता क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे बस हल्लाशेरी करके पहुंचते हो? नहीं भाई, जाओ आवाम से रब्ता करो, आवाम के मामला सुनो, आवाम के मसले सुनो। लाहौर में जलसा करना चाहिए, कराची में करना चाहिए, हर जगह पे करो, डिवीजन बाय डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, जैसे पोलिटिकल पार्टी पहले करती थी
1: जी।
2: ये क्या है कि इकतदार में आके बंदरबाड़ में बस अपना अपना हिस्सा लेके असेंबली में शोर शराबा करके बैठे हुए।
1: ठीक
2: सर, देखे अवाम के जो मसले हैं ना उसको इश्यू करने के लिए अवाम से रब्ता करो। जब आप अवाम का जम्मे गफीर नून लीग के जलसों में, पीपुल्स पार्टी के जलसों में, पीटीआई के जलसों में, सब पार्टियों के जलसों में आएगा ना, तो ये डार्क कुवत है ना खुद ब खुद डर के बैठ जाएंगी, वरना तुम्हारे गर्दन से पकड़ के वहां तुम्हें दबोचेंगे जो आप ही दबा के रखा।
1: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 5415 चॉइस साहब आप ऑन एनर्जी।
3: जी अस्सलाम वालेकुम
1: वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जी वालेकुम सलाम सर, वालेकुम
3: अदी साहब की आ रही
1: जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जी जी बिल्कुल।
3: चलो पटी साहब, पहला तो एक पाकिस्तान की तारीख बदली गई है अज के वधिया हुई कीमत पाकिस्तान कभी वापस नहीं सुनाइया पटी, और सो भी इस वड्डी मकदार दे विच ते एक होशाइन कदम है, लेकिन मजीद सानू मेरे ते काम करने की जरूरत है। पट्टी साहब गल है के साढ़े दोस्त कहते ना सर समझ नहीं आउंदी, समझ आउण तुहानू किंज जावे, क्योंकि समझ आउंदी है जिंदा नू, जिंदा लाशा नू समझ नहीं आउंदी। कराची दे आवाम चीख चीख के मरदे ने पे, और सानू पानी दियो, सानू सड़कां दियो, सानू डंपर माफिया तों निजात दियो, लेकिन किसे दे कन्ना चो आवाजा नहीं पैंदियां इस वजह तों कि जिंदा लाशा नू समझ नहीं आउंदी हुंदी। एक गल, दूसरी गल पट्टी साहब गल है वे, मैं कल भी गल की थी तुहाडे प्रोग्राम दे उत्ते, अज उ आ गई अदालतों की गल। पट्टी साहब इस अदालतों के जेड़ा निजाम है और इना लंबा निजाम के नाल लोगों को सजा लगती है, वह उथे नहीं
1: सही,
3: वह पूरी दुनिया के पट्टी साहब, वह चाहे फर्स्ट वर्ल्ड है चाहे थर्ड वर्ल्ड है, अदालती सिस्टम लेंथी होंगे, लोगों का स्टैमिना जवाब दे जाता है, जो सजा लभदी है उन्ने चिर उस सजा की अफादियत ही खत्म हो गई होंगी है। पट्टी साहब
1: ठीक सर,
3: मैं तुम एक छोटी जी गल दसना, मैनू अपना अगले दिन एक बंदे ने अपना रेडियो उत्ते गल कर रहा किसी प्रोग्राम के उत्ते, मैं ना नहीं उरा लैंदा, उरा इंटरव्यू किया बल्कि एंकर ने पूरा एजेक्स के पट्टी साहब, कुछ भी अपना दिन पहला एक फैमिली अपने ਡਰਾਈਵਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਰੁਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲਾਕਟ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚੇਨ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ।
1: ਠੀਕ,
3: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ।
1: ਠੀਕ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ, ਬਾਤ ਕੀਜੀਏ।
4: ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਸਰ।
4: I mean, to cut the story short, time bhi kam hai aapke paas.
1: Ji, ji.
4: But kismati ye hai, Bhatti sahab, ki koi bhi government ho, koi bhi party ho, jab tak fair vote of people se chuna ke log nahi aayenge, unko kaise darj ho sakta hai aam awam ka, mujhe bataye, 70 saal ya bahut hote hain Bhatti
1: sahab.
4: It's a very long period. سات جنریشنز بدل جاتی ہیں 70 سالوں کے اندر. ہمارا ملک نہیں بدلا, آج بھی پانی نہیں ہے, آج بھی گیس نہیں ہے. اب میں تو حیران ہوتا ہوں, یہ ہمارے دوست بہن بھائی فون پر آتے ہیں اور اس طرح کی خیالاتی باتیں کرتے ہیں, 70 سال ہو گئے پینے کا پانی نہیں ہے بھائی, ساری باتیں
1: چھوڑ
4: دو, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کس گورنمنٹ کی باتیں کرتے
1: ہیں,
4: پیپلز پارٹی اور کون سی پی ٹی آئی.
1: صحیح بات ہے, بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ پہلے پوری کریں, اس کے بعد پھر ٹھیک
4: باقی ساری باتیں.
1: اور ٹھیک سر, تھینک یو سر جی, ماج بھائی تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو, تھینک یو, ہیو ٹو کلوز دا پروگرام. بلال صاحب کلوز کیجیے گا سر.
5: جی بالکل, جیسے ہمارے بھائیوں نے بھی کہا, دیکھیں عوام کو ہم جب ریلیف کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں انہوں نے بھی باور کروایا ہے کہ آہستہ آہستہ مزید بھی جو ہے ریلیف عوام کو دیا جائے گا, تو بالکل ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگر اور پرائسز جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کم ہوتی ہیں اور یہ جو معاہدہ ہے یہ مطلب ایک پرولونگ رہتا ہے اور اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتا, تو مزید بھی جو ہے نا وہ عوام کو حکومت ریلیف دے گی. اور صرف اس حوالے سے نہیں, ایک دو اور اسکینڈلز بھی ہیں جس کی ابھی مطلب ایک تھوڑی باز گز چل رہی ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, تو حکومت کو ہر طرف سے جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے.
1: ویری رائٹ, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. بلال صاحب دو دن کی چھٹی ہے, منڈے ان شاء اللہ آپ سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا.
5: تھینک یو, تھینک یو.
1: اینڈ لسنرز تھینک یو ویری مچ, آپ کی کالس کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ سے اجازت چاہیں گے, دعاؤں میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی کھوڑنے کی چیز, ان آلویز فالو یو ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشت زندگی. ان شاء اللہ ہماری ملاقات ہوگی منڈے کو شام 7 بجے, ویکینڈ ہے, فادرس ڈے بھی ہے, بچوں کو وقت دیجیے گا, ہیپی فادرس ڈے, اور ان شاء اللہ بشت زندگی کی ہماری آپ کی ملاقات منڈے کو شام 7 بجے. اسٹوڈیو انجینئر مریم, میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ اور سب پر دمالا.